0: जाने
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज़, दिन हो या रात,
2: रेडियो

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वान रंग अमन।
1: ताची हम ना उम्मीद अगर जाए देव खो डॉक्टर पुतलाश की नुबिया इंतजार दुकुमे खबर दे उम्मन राशि मजीद खान होम्योपैथिक ता और दुखपलो बीमारियानो इलाज के मजीद खान होम्योपैथिक क्लिनिक की ताची दमे दे हर किस्म बीमारियानो आसाबी बीमारियाने जोड़ों में दर्द ना दमला दर्द अरकुन्निसा दु गुर्दे कानी त्रिखिकाने और सोलई बवासीर बगैर प्रश्न यो ख इलाज कवले से औलाद दचा निश्ता औलाद हम अल्लाह ताला लुई नेमत है नो बिल्कुल रात ले से इलाज कवले से एड्रेस सुंदर सरवाख ले जेल चौक अदालत सर बिल्कुल निजदे अरसलान मार्केट करक कॉन्टेक्ट नंबर 03744 20 45 545 कॉल ओके

जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सलाम वालेकुम बिल्कुल सुबह दोपहर तारीख हाजिर छ सासु खिदमत के उम्मीद लरमा छे सुब्रह्मीन वाल दिया ठीक ठाक फिट फाट खुशहाल सुगल भी

बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक सुन रहा हूँ प्रोडक्ट हर जी की तरफ से अवेलेबल दी पासा नहीं सर हर कॉस्मेटिक को जन स्टोर की तरफ से पासा नहीं सर अवेलेबल दी हजी मुंगा प्रोग्राम बिल्कुल अनेर दे जुलमी रेडियो नक्शेराबानी ऑल दी सुन रहा एरिया जी टूल एरिया के तरफ से द इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिले वीगी देने अलावा मुंगा प्रोग्राम अनेर दे उम्मीद रेडियो चार सदे बाने हम नो दारंगे चार सदा वर्ष वसरा मरदान पेखबर हर जी की तरफ से द इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल दी हर कॉस्मेटिक जन स्टोर की दारंगी मुंगा बिल्कुल अनेरियो आवाज एफएम अटक रेडियो बने हम नौ तसुता द अटक वर्ष सरनूर सुमरा एरियस जी चागा द अटक रेडियो आवाज वरे देखीगी नो हर जी के तसु देश में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलेगी हर कॉस्मेटिक जन स्टोर के पास नहीं सरा दारंगी बिल्कुल मुंगा अनेरियो करक रेडियो बने हम इन करक रेडियो द स्टोरी ने बिल्कुल प्रोग्राम की 88.4 ना नो बिल्कुल करक के अंबेरी खिला औदिल नथमर वर्षा वर्षरा सुब्रह एरिया जी हर जी की तरफ से अवेलेबल दी अंबेरी खिला दारंगी बिल्कुल

अच्छा जी मुंग तो मैसेज कर दे वचे सलाम एंड वेलकम तारिक सर बखीर रागले करे रेडियो बने वॉइस क्लियर दे गुलाले मुंग तो मैसेज कर दो ककी ना सासु डेर जत बने ना कोविश रहीम उल्लाह सरा और रफी उल्लाह सरा इस मठोल प्रोडक्ट मिले वेगी पक्का की के सो डेर जत मन ना और एमएस डी मामत ए सलाम वेली थी यो जहान मेन लो यहा दे शेखा देन लवा वचे अस्सलाम वालेकुम सलो लकी मरवत ना करक लकी और डीहान और टांग रेडियो बने दवाजो के देनो ताजो डेर जत मन ना को गुलोनी मैसेज कर दे ताजो डेर जत मन ना को मैसेज दे ओकड़ प्रोग्राम की और दिन लमा हुआ छे अस्सलाम वालेकुम आई एम शहीन मरवत वेलकम हाउ आर यू शुनाइस फाइगर के नाता हम सलाम सही वालेकुम अस्सलाम देर रजिया तो मरना मौलाना अब्दुल खालिक से मैसेज कर दे मंगल मिले ना वही कहना चिकन खड़ी बने आवाज हो के दे हाइबर प्लाजा दुकान नंबर चार की मास्टर देश में टूल प्रोडक्ट मिला भी जबरदस्त मौसम दे बिल्कुल देखे शक नहीं माशाला बेगा बारान छवि दे नागी पो जबाने मौसम डेर खोले छवि दे और गर्मा चुकम जोर दे ना बिल्कुल उस खत्म छवि दे यखनी माशाला शुरू छवि दा नो यखनी चुकम दाखन के गर्मा सरम बीखी न लगी वेच अस्सलाम वालेकुम अरीशा यमा द बुनीरना तारिक भाई शो दे अवड़मा पो 97.0 उम्मीद रेडियो आवाज सफार अजी

0: अभी बीमारियां नहीं, जोड़ों में दर्द होना, दमला दर्द, अरकुन्निसा, द गुर्दे काने, द त्रिखि काने, अरसोले, बवासीर, बगैर ऑपरेशन यो ख इलाज कवले शे। औलाद द चानिश्ता, औलाद हम द अल्लाह ताला लुई नेमत ते। नो बिल्कुल रातले शे, इलाज कवले शे। एड्रेस सुंदर सरवाख ले, जेल चौक अदालत सर बिल्कुल निजदे अरसलान मार्केट करक। कॉन्टेक्ट नंबर 03-44-20-45-545। कॉल ओके।
1: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ।
2: सिफात जैतून हर्बल आयल कतासु विख्तगुर जीगी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मो ठीक नेवी, जोड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दुनेवी या पबदन कम जाए के मोह दर्द वी और दादीना इलावा तासो द बवशीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ी वी और ठीक शेवी नेवी, तदे टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल आयल इस्तेमाल कए। दावत आसोता करक बनू लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदे कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल आयल तला सकड़े। मजीद मालूमात उदा पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301-80-84-300।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

अच्छा जी, आप मेरे ख्याल में बॉयज बिल्कुल ठीक हैं। रकी पटक ने ज्वाइन किया है। रकी पटक की दनियादी स्टाफ कश्मीरी बांडना। तरकी जी भाई, मैंने 2 दिन छुट्टियां की थी, बांजी की शादी थी। अच्छा माशाल्लाह, और बांजी की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी की शादी अच्छा जी चले, अच्छी बात है। थैंक यू रकीब भट्टक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू रकीब भट्टक। नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो, नेक्स्ट मैसेज भी रकीब भट्टक ने किया है। वेलकम टू द शो तारिक जी भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। सलाम टू ऑल टीम एंड एमएसजी भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। इसके अलावा रकीब भट्टक ने फिर से ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि मैं अपने पहाड़ों में और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। चले अच्छी बात है।

गवर्नर राज के बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस समेत एडवोकेट जनरल के 57 अफसरात को फारिग कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK में गवर्नर राज के नफाज के बाद ब्यूरोक्रेसी और पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ के बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस के 57 अफसरान को भी ओहदे से हटा दिया गया है। गुज़श्ता रोज एडवोकेट जनरल ऑफिस के एडिशनल एडवोकेट जनरल शाफेसल इलियास ने सूबे में गवर्नर राज और इमरजेंसी लगाए जाने के इकदाम पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस्तीफा दिया था। सूबे में इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने का फैसला गुज़श्ता रोज किया गया, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 232 और 234 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने की मंजूरी दी थी।

अच्छा जी, इसके अलावा महमूद अचगजई ने कहा है कि हर किस्म के मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नर राज के खिलाफ जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। कौमी असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ़ महमूद खान अचगजई ने कहा है कि वो सियासी मसाइल के हल और जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए हर किस्म के मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हाइबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर राज के निफाज के खिलाफ अवामी और जमहूरी जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा सुहेल अफरीदी और कबीना अरकान हिफाजती तखवीर में हैं, तलाल चौधरी की तस्दीक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के निफाज के बाद हुकूमती सतह पर साबिक वजीर अला सुहेल अफरीदी और इनकी कबीना के बाज़ अरकान को हिफाजती तखवीर में लिए जाने की तस्दीक कर दी गई है।

चलिए ये थी कुछ अपडेट्स जो मैंने आपसे शेयर करना था। आपके कॉल्स मैंने प्रोग्राम में शामिल करना है। आप लोग कॉल कर सकते हैं 09272912922 यानी कि पीटी सेल नंबर पे कॉल कर सकते हैं।

0: अच्छा क्रिकेट पॉलिसी बहुत हम तस्वीर बिल्कुल भी हम क्रिकेट वाले से भी आपको ये बताता चलो कि T20 सीरीज जीतने के बाद साहिबजादा फरहान का जारहाना क्रिकेट जारी रखने का अजम। साहिबजादा फरहान ने T20 सीरीज जीतने के बाद जारहाना क्रिकेट जारी रखने के अजम का इजहार किया है। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बर्तरी हासिल करने के बाद PCB डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सीरीज शुरू होने से पहले मुख्तलिफ अंदाज की क्रिकेट खेलने का जहन बनाया था। T20 क्रिकेट जब भी खेलूंगा जारहाना अंदाज में खेलूंगा। और उन्होंने कहा साहिबजादा फरहान ने कहना था कि उन्हें मालूम है कि उनके बाद मां सदाकत हसन नवाज और साइम अयूब जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं इसलिए वो अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले दोनों T20 इंटरनेशनल जीत कर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। चले देखते हैं नेक्स्ट कॉलर, टाइम भी कम है, जस्ट 7 मिनट जो है बाकी प्रोग्राम में, सो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: सुख खबर है क्यों क्या जना अलीना खबर है क्यों बिल्कुल ठीक ठाक तक पहले शाय जी प्रोग्राम मुरवे मड़ाई दे पहाकड़ा प्रोग्राम दे उस लगवा सरंगे चार न के नो कमा इलाका दा तुस वाले कमा इलाका दो खजी सही था मतलब रेडियो को बिल्कुल आवाज बिल्कुल ठीक थे ऐसा मसला है ऐसा इशू न कभी हो तो उस पता नहीं दवे ले बदलते की मसला कभी खजी सही था बस बिल्कुल तुम चुकम दी मौत पर टैक्स बने वेले सही से दलते वेले इशू कभी मतलब समसला था खजी इधारा तो हुए से सुसुटी कली दे पकड़ा अच्छा जी शाह सही था और सालन के मुसब हकड़ा गोश्त दासे पो नजर दो वेल छे आसे दो वेल कना सही में बखा दो गोश्त खै जी सही था डेरा मनना लोया खदर से कॉल के वाले सही था जी जर जर टाइम कम दे वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक दादा तो गोश्त दे सही पहाकड़ा हो ना मतलब आसे दे उवेला दे उवेला
1: सही
0: अच्छा मोच आसे ना गोरा पन्ना सुड़े उवेला आसे ना पहाकड़ी नहीं आसे तो सुई आए जी सही था ठीक सर डेरे मने ना लो ये खसे शीत वाड़े और टाइम रस रकम दे ओके लफिज यो जहान मेरा जी टाइम देर से रकम सिर्फ लास्ट टू लकी कॉलर शुक्र प्रोग्राम की शामिल भी बेबाकी नबाद दरना इजाजत खला प्रोग्राम 6 बजे पर भी और नन प्रोग्राम के मां सॉन्ग हम प्ले न कर सके टाइम शुक्र बिल्कुल वफा ना कुड़ा टाइम रसर कम मोजी अस्सलाम वालेकुम सो खबर है कि भी क्या नाम अच्छा न्यू खड़ा खबर है कभी खजे सरंग शाही बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत तो सही है ना आओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो दुआ गाने दी टाइम रस रकम दे सो शॉर्ट मैसेज से पैगाम ओवर के आखिर के
1: बस ठीक
0: शो सही था डेरा मनना कॉल के वाली ओके अल्लाह हाफिज यो जहान मनना हाँ जी टाइम दे रहे खत्म से तो कॉल जी हो मजीद कॉल प्रोग्राम की नशम शमिल वाली அச்சா ஜி தின மகிழ்ச்சிக்கும் அலீனா ஹட்ட கால் கடை ஒன்று பில்கு டெக்ஸ் பண்ணி இனி 8543 பண்ணி தோசிச்சுக்கும் தா இல்ல காதா தா பில்கு சென்ட் கீச்சி தல்தக்கிதா இஷு கவி சக்கச்சி முங்க தக்ரீபன் மியாஷ் கீஜிச்சி சிஸ்டம் சுக்கும் தா அப்கிரேட் கடை தே நோ மத்தலப் கமே லக்கி கி இஷு கவலா நோ ஆல்தக்கி ஓஸ் பில்கு இஷு ந கவி ஹோதா தோசி பத்தனி ஜி கமே லக்காதா ஜி தல்தக்கி இஷு கவி நோ தா ஜுரூப் கி டெக்ஸ் கி ஒலிக்கி ஆர் கி போலிக்கி ஸ்பேஸ் பல் நோம் பல் இலக்கி நோ கவி சென்ட் கி போ 8543 பண்ணி நோ ஜுரூப் டெக்ஸ் கி மொத்தம் ஏ சி தோசி கமே லக்காதோ ச தல்தக்கிதா மத்தலப் இஷு கவி ரேடியோ இஷு கவி ஓ ஆவாஸ் ந தர்ஜி

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

0: अच्छा जी, नौ नंबर जी नंबर रिजल्व याद रखते हुए नंबर दे 0344 20 45 545। ठीक सो दे नंबर मन प्रोग्राम से लाइव कॉल को वाली 0344 20 45 545 दे नंबर बने कॉल कवल से अवल जरा जमा डॉक्टर साहब उधर बने और डॉक्टर साहब तो प्रोग्राम की हर कले वस्सलाम वालेकुम
1: डियर अवल साहब अस्ता सुन डियर जात मन ना को डियर जात शुक्रिया अदा को और बल्कि जमंगा तमाम और ये दुन को हम शुक्रिया अदा को चाहिए मंगा दे।

भाई सिंह सलाम दुआगानी में कबूली का अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो नाम जाना मामा दी ग्राना सात दिन बाद दर तो वेलकम वाय अमाडे रमजई वगड़ा शो तो राग ले हास्ता आवाज पमाडे खोग लगी उस्तादा दरोग खानदा वडे रमजे के भी हां लग रहा था खानदा खपल खोर तो खपल कोरना देर ज्यादा मन तेंगे खुशहाल हो से फरमानुल्ला बंगशियमा सलाम इनाम भाई डेर फंटास्टिक मौसम दे बारानो शो सम खुशहाल शुमा आल मिनवाल ते सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई कैसे हैं आप वेलकम टू द शो आपको स्पेशल सलाम मेरी तरफ से सब लिसनर को सलाम रेशमा जिंदाबाद महरीन फ्रॉम ब्यूटीफुल टांग न दुआगानी सलामुन डेरा ज्यादा मनना मैसूद भाई सलामुन में केवल कसम मैसूद आई एम फरियाल फ्रॉम डी आई खान सलाम मामू संग है वहां अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई कारी नूर खिताब फ्रॉम ब्यूटीफुल करकी आवाज हो रही अरूसा शॉपिंग सेंटर पर दुकान दे प अंबीरी कला के सर तमाम प्रोडक्ट साउंड इज ओके इट इज मी आसिया नूर फ्रॉम ब्यूटीफुल खपल कोरना हाँ

0: जी फैंसी कॉस्मेटिक्स जीएसके कॉस्मेटिक्स मीठाखेल कर कम खैंदरन जमा आवाज हो जीएसके कॉस्मेटिक्स और फैंसी कॉस्मेटिक्स रप मीठाखेल के तमाम प्रोडक्ट मिलावे गए
1: غني خوردا سرم ندارو لري ندم كل جهان دسترگي سترگي نشتا